0: रेडियो हो।
1: आज अपनी फिर आवेर में मेरी प्यारी बुढ़ी मेरी मुंह जुनकिरी बिचारा अलसम मले बात पर ही बसी गोली मो बजे कुस्तु खत्म की बने दिल दार दगर माते रहा तो मले ये ला ओ पुष्टि कर मेरी बुढ़ी बुढ़ी वंदर इशारे ओ डार्लिंग आई लव